0: बैठ जाइए, खामोश। मैंने एक भूल की, सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता दे।
1: A special eye to the best news family, especially wonderful wife Celeste.
0: बल्कि
1: want to wish you all the best. It's coming from Cyril Bastie up in the USA.
0: मैं खुशी है कि उमा देवी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करता कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं और गाएं।
1: Betty from New Jersey, good afternoon to you.
2: तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा, क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती?
0: हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा, मैं तेरे पिता समान हूँ, मेरा आदेश है। चल चल, उठ उठ उठ।
1: Well, let's say hey and happy birthday greetings to Sister Taro. Wishing her all the best, God's richest blessings to you. It's coming from Nalini Sadlu up in the USA. Hello, Taro. Happy birthday. The Suriyas joining us, the Vita and the family. A special shout out to Balu, says he's enjoying the Abhiman song.

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।